সুমিতা ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী সুখদ।

मीरू में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही 104 एफएम मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 6 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 मिनट तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थोतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री एके दास, श्री तानिंग ताको और सुशीषी करिका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमर कुमार दास और श्री लाम सरिंग, मनपा में उद्घोषक श्री कुंचो संगीकी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilkar Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती

0: कामकाज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।

0: श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री

0: डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए देवाशीष दास गुप्ता के स्वर में कबीर अमृतवाणी।

श्रोताओं, अभी आपने भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में देवाशीष दास गुप्ता से कबीर अमृतवाणी सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है विभिन्न पंक्ति का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आज आप सुनिए अरुण जमदय, जसवा हलम, प्रियंका और साथियों की आवाजों में चंद आधुनिक कोकपरोक गीत।

0: श्रोता, अभी आपने विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रदेश संगीत के अंतर्गत चमेदों ने कोकपुर गीत का आनंद लिया। अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:23 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इसमें श्रोता आज आप सुनिए मेजर रेलंगनो बॉब खाती म्यूजियम के गाइड मिस लक्ष्मणचिकी से वीरता संग्रहालय के बारे में संक्षिप्त में जानकारी।
1: ताशी दिले, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम लपसंग चेकी है और मैं क्यांगर विलेज की हूँ और मैं लास्ट ईयर की दिसंबर से मैं यहाँ मेजर बॉब खातिंग के म्यूजियम पे ऐसे गाइड काम कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, अपने तवांग के बारे में हिस्ट्री जानने को मिलेगा, आपको 1962 वार के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। आप फास्ट एंट्री करते हो तो आपको एक सोल ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा जो वहाँ पे 36 सॉइल है और वो हमारे जितने भी इंडिया के स्टेट्स है, यूनियन टेरिटोरी, वो सभी के जगह से लेके आया हुआ है और वो ऐसा जगह का है जिस दौरान हम इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो दौरान जहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है तो वो सभी से

लेके आया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मेजर बॉब खतिंग के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में सब कुछ देखने को मिलेगा। और उससे आगे बढ़ते हो तो आपको उनके मेडल्स के बारे में, उनको क्या क्या मेडल मिला था, उन्होंने लाइफ टाइम में क्या क्या अचीव किया, वो सब देखने को मिलेगा। और उससे आगे जाते हैं तो आपको 1962 वार के बारे में जानने को मिलेगा, उनके बारे में हिस्ट्री जानने को मिलेगा। और 1962 वार में जो वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ के हमारे तवांग के लोकल जो मोनपा है, जो 1962 वार में यहाँ पे थे, जिन्होंने 1962 वार को अपने आंखों से देखा है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मूवीज है जिसको देख के आपको 1962 वार के बारे में कुछ और ज्यादा नॉलेज मिल सकते हैं, वो सब का कलेक्शन है। और उससे आगे जाता है तो आपको मोनपा गैलरी मिलेगा, जहाँ पे हमारे जो मोनपा ट्राइब है तवांग के, जितने भी उनके कल्चर है, उनके ट्रेडिशन है, जो उनके अटायर है, जो उनका यूटेंसिल्स है, जो पहले यूज हुआ करता था और अभी भी यूज हुआ जाता है, और कुछ ऐसा चीज है जो

0: 1962 वार के बारे में कुछ और ज्यादा नॉलेज मिल सकते हैं वो सब का कलेक्शन से। और उससे आगे जाता है तो आपको मोनपा गैलरी मिलेगा, जहाँ पे हमारे जो मोनपा ट्राइब है दावांग के, जितने भी उनके कल्चर है, उनके ट्रेडिशन है, जो उनके अटायर है, जो उनका यूटेंसिल्स है जो पहले यूज हुआ करता था और अभी भी यूज हुआ जाता है, और कुछ ऐसा चीज है जो अभी नहीं पाया जाता हर जगह पे, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और यहाँ पे आपको लोकल घर सब देखने को मिलेगा, हैंडक्राफ्ट ये सब देखने को मिलेगा। आप अगर म्यूजियम पे यहाँ पे आते हो नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, पर आपको अपने नॉलेज और जो दावांग के आपको अपने कल्चर के बारे में मालूम चलेगा, और यहाँ पे जो 1962 का वार हुआ है उसके बारे में मालूम चलेगा कि हमारे ये तवांग अभी इतना पीसफुल है, वो कौन सा स्ट्रगल करके इतना पीसफुल हुआ है, वो सब आपको देखने मिलेगा। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेजर बॉब खातिंग पे जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू।
1: श्रोता, अभी आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत मेजर रलंगनो बॉब खातिंग म्यूजियम के गाइड मिस लफसांचिकी से वीरता संग्रहालय के बारे में संक्षिप्त में एक वार्ता सुना।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से मोहम्मद फैज की आवाज में। इस गीत के रचयिता समीर अंजान तथा संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

श्रोता, अभी आपने साहित्य कदरी के गीत पर फिल्म गदर 2 से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाजों में एक गीत सुना। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। पार्टनर फिल्म से सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और सुजी क्यू की आवाजों में। इस गीत के रचयिता है सबीर अहमद तथा संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोता पेशे आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म कृष से सोनू निगम और श्रेया घोषल के आवाजों में। इस गीत के रचयिता है इब्राहिम अश्क तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

गुरप्रीत सैनी के गीत पर श्रोताए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धड़क 2 से दर्शन रावल, जोनीता गांधी और रोचक कोहली की आवाजों में।

प्रीतम के संगीत पर श्रोताव्य आपने फिल्म भूलचूक माफ से नीरज श्रीधर, सुनिधि चौहान, जरा एस खान और तनिष बगची की आवाजों में एक गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। पहली फिल्म से मोहित चौहान के आवाज में। इस गीत के रचयिता राकीब आलम तथा संगीत दिया है यार रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आप हमें आना ले रहे हैं आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरे में।

कौसर मुनीर के गीत पर शताब्दी आपने फिल्म दो पति से परंपरा तंदुन के आवास में एक गीत सुना। आइए कार्यक्रम को यहीं जारी रखते हुए सुनते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से विशाल मिश्रा, हंसिका परिख और सचिन जिगर के आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत के रचयिता सोम तथा संगीत यह है सचिन जिगर ने।

जुबेर नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में श्रोताओं ने अपनी फिल्म श्रीकांत से एक गीत सुना। इस गीत की रचयिता शौरभ लाल तथा संगीत दिया था तनिष बगची ने। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। हसीन दिलरुबा फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में इस गीत को लिखा है क्षितिश पटवर्धन ने तथा संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम गीत, नीरज रजावत के रचे बोल पर फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया से। इस गीत को गाया है रोमी और दनिश बग्ची ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:23 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए निसाद खान से सितार वादन, राग है चांदनी कल्याण, तबले पर संगत दे रहे हैं शफ़त अहमद खान।

श्रोताओं, अभी आपने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत निषाद खान से सितार वादन सुना। राग था चांदनी कल्याण। तबले पे संगत दे रहे थे शाफत अहमद खान। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और परिचालन तैयारियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश द्वारा चिंपू स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत बागवानी विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से CSIR IHBT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई और श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष में भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,977 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टायट KT पारनायक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और परिचालन तैयारियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने शिलांग में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास

0: लखेड़ा के साथ बैठक में के दौरान ये बात कही। राज्यपाल ने बदलती सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जवानों को हर समय सतर्क रहने पर बल दिया तथा सीमा बाड़बंदी कार्य को तेजी में लाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में असम राइफल्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ संबंध मजबूत करने और दूरदराज क्षेत्रों के विकास में योगदान देने वाले असम राइफल्स के नागरिक कल्याण एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश द्वारा चिंपू स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वृक्षारोपण केवल साल में एक बार होने वाली गतिविधि नहीं बल्कि जीवन भर का मिशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज लगाया गया प्रत्येक पेड़ स्वच्छ हवा, स्वर्ण पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह अभियान विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत बागवानी विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHBT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर बागवानी निदेशक तोबोम बाम और CSIR IHBT के निदेशक सुदेश कुमार यादव ने अरुणाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री गैब्रियल दिवांगसु और सचिव कोच रिंगिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। श्री वांगसु ने कहा है कि साझेदारी से समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से ठोस परिणाम मिलने चाहिए। सहयोग के तहत पुष्पादन, उच्च मूल्य वाली फसलें, औषधीय पौधे, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, मूल्य संवर्धन और बाजारोन्मुख बागवानी विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों पक्षों ने अरुणाचल प्रदेश में एक सतत और नवाचार आधारित बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष JP नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.9% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंच में निरंतर निवेश का परिणाम है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री सुशील खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये दौरा भारत और नेपाल के बीच विदेश साझेदारी को और मजबूत प्रदान करेगी।
2: With Nepal, we have an expansive

0: एजेंडा।
1: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
0: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खानमोई ने सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, हॉर्मुज जलडमरु मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रिजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। और मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले सभी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपू गपक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे चेयर्ड अ मीटिंग विद मेंबर्स ऑफ द पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसी। द प्राइम मिनिस्टर सेड एंड द EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. The members also gave their assessment of the impact of the West Asia conflict on India and the world. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors, FPIs, in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. Defense Minister Rajnath Singh today said that India continues to stand out as the world's fastest growing major economy at a time when many countries are facing economic uncertainty, referring to the registered GDP growth rate of 7.7% in the financial year 2025-26. Singh said that the achievement underscores resilience and underlying strength of the Indian economy built over the last 12 years. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Central Board of Secondary Education CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat today said that India's solar capacity has grown from 2.8 gigawatt to 155 gigawatt in the last 12 years. In a social media post, Shekhawat said that over 4 million homes are illuminated by solar

中礼，夜莫夜莫中礼。

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही 104 एफएम मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको आज के शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदुल निर्म के अंतर्गत सुन पाएंगे पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुंसे के बोधी शिक्षक तेंजिन फुनसो और नुंगला जिमिथांग तथा दुदुंगर एजुकेशन ब्लॉक के अन्य 5 और पोती शिक्षकों द्वारा शेदुन जुनचक सुम्पा क्याब्रो सेमगी कंगलोमा तुंगशा चिशा ग्यावे शब्दन डोलमा खोर्चे मलमे मोनलम डेमन द्वीपा तेंसिक मोनलम ग्यावे सेंगा और ओबामलम। आज शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, इसमें श्रोता आज आप सुन पाएंगे खंडो व जांगमो जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पेमाटन से हुए एक भेंट वार्ता। आज शाम 7:35 पर कार्यक्रम सांझ और आवाज, इसमें श्रोताओं पहले आज आप सुन पाएंगे जोधा अकबर फिल्म से एक सांझ और उसी सांझ को जावेद अली के आवास में, और याराना फिल्म से एक सांझ और उसी सांझ को किशोर कुमार के आवास में। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज, शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने, इसमें आज आप सुन पाएंगे फिल्म शबास मिठू से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे सुन पाएंगे। आज रात्रि 8:15 पर

आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 7 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे तवांग मठ के स्वर्गीय लमाधंगा द्वारा गाए चंद बोध भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत, इसमें कल आप सुन पाएंगे पापोन के गाए चंद असमीय गीत। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे एमजी तोंग फ्रेश के निदेशक श्रीमती नवांग चोजम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए तवांग युद्ध स्मारक के पास आउटलेट बिक्री काउंटर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सेना के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए। कल शाम 4:00 महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम महिला जगत, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे मेजर रेलंगनु बोब खातिंग म्यूजियम ऑफ वेलोर और इसके महत्व पर म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सुक्षी सनली लेगम सिंफो और गैलरी गाइड सुक्षी लुफसांग छोकी के साथ हुए एक भेंटवार्ता। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, इसमें कल आप सुन पाएंगे वीजी जोग से बेला वादन। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5:00 कार्यक्रम नमथन लेरिम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मंथपा में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम रिशुंग लेरिम, शाम 6:00 कार्यक्रम लेरिम सेरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम शेदुन लेरिम, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुंसे के सुक्षी श्रींग लामू और उनके साथियों द्वारा शेदुन ग्युंचक सुम्पा गंगलोमा डोलमा खोर्चे ग्यावे शप्तन सेमे यंतन मरमे मल्लम और ओबा मल्लम। कल शाम 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कवाली, शाम 7:25 पर कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रदेश के समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत, इसमें कल आप सुन पाएंगे लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8:00 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद ले पाएंगे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की

ज्ञापन कर। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरुखा अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मुनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

也要让苏罗摩瓦吉布迪巴当杰列苏苏小苏苏南当杰拉尼杰苏伊隆萨耶当杰拉尼布杰苏瓦尼苏巴杰拉

0: Hangi nasi data şeydun lirima PM Shri Convent Middle School Kunsek Poik Gergan Tenzin Punzo Ning Lungla Jimithang Titongar Education Block ka Poik Gergan Pasi Donu Kyunchak Sumba Kyabdo Samke Kangloma Tungsha Chisha Kyabe Shaptan Tolma Khorche Marme Munlam Temun Duipa Tensik Munlam Kyabit Senga Ningwa Munlam San Number Hangi nasi tambache Akashwani Tawang Tishnuptik Monpak Lerim Banang Chachang Dos Uz Akashwani Tawang Imbur Hangi Chambushuk Bilirim Hindi Ke Singir Sujanishche Sannang Sa
1: समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकाल विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर

0: for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. In hockey, the Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing hosts Japan 4-1 in the final in Kakamigahara today. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian men's under-18 hockey team on winning the Asia Cup 2026. In a social media post, Mr. Modi said the team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. He said it is a splendid accomplishment by the young hockey players. The Prime Minister said this triumph also reflects hockey's growing popularity among the youth. He conveyed best wishes to the team for their future endeavors. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आज आप सुनिए खंडू डोबाजांगमो जिला अस्पताल तवांग के होम्योपैथी डॉक्टर पेम्यूटन के साथ हुए एक भेंटवार्ता। विषय है होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली और उपचार। भेंट करता है सुश्री दोर्जी डेमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में है खंडो ड्रोवा सांगमो जिला अस्पताल तवांग के होम्योपैथी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पेम्यूटन। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में और कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
3: थैंक यू।
2: हमारे आज की जो चर्चा है इसकी विषय रहेंगे होम्योपैथी चिकित्सा क्या है और इसकी इलाज किस तरह के होते हैं, इस बारे में हम डॉक्टर साहिबा से चर्चा करेंगे और आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमारे आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले है। तो डॉक्टर साहिबा, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपसे अपने बारे में कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपने आगे जाकर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है कहाँ से पूरी की थी और चिकित्सा अधिकारी के रूप में आपके पास कितने सालों के अनुभव है, इस बारे में आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर पेम्यूटन है। मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर होम्यो काम करती हूँ खंडोरोज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग में। तो मैंने अपने स्कूलिंग 10th क्लास तक सेकेंडरी स्कूल जंग से किया है, देन हायर सेकेंडरी के लिए मैंने तवांग हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है। उसके बाद फिर कलकत्ता से मैंने होम्योपैथी का अपना डिग्री लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं वापस आके तवांग डिस्ट्रिक्ट में मैंने एनआरएचएम के अंडर में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया था। तो मेरा पीएचसी लुमला में थी, मैं उस समय लुमला पीएचसी में थे, सीएससी में अपग्रेडेशन नहीं हुआ था उस समय में। वहाँ में मैंने 1 साल 3 महीने जैसे काम किया। इसके बाद फिर मेरा जॉब रेगुलर होके मेरा फर्स्ट पोस्टिंग एज ए रेगुलर मेडिकल ऑफिसर मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेजू में वहाँ में काम किया। तो वहाँ में मैंने अराउंड 10 साल वहाँ में काम करके फिर 2021 को मैंने वहाँ से ट्रांसफर लेके खंडो डोवा जाऊँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग में ज्वाइन किया है।
2: डॉक्टर साहिबा, हमारे आज के इस चर्चा के विषय मैंने पहले से बता रखी है। तो सबसे पहले अब हम आपसे जानेंगे कि होम्योपैथी चिकित्सा क्या है और इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई थी और इसके महत्व के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: जी होम्योपैथी आप सभी ने कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, या बहुत लोग ने इसका ट्रीटमेंट भी लिया होगा, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। जानने की उत्सुकता भी रहती है कि ये क्या सिस्टम है, कि हमको समझ में नहीं आता है। तो बहुत लोगों को अवेयर नहीं भी है और बहुत लोग जानते भी है। तो एक्चुअली होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि हमारे यहाँ में स्पेशली जो हमारे एरिया में उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगर मैं शुरुआत में कहूँ तो जैसे आपने कही एक कहावत सुना होगा कि लोहा लोहा को काटता है, तो उनका प्रिंसिपल भी कुछ इस तरह से ही है कि लाइक क्योर्स लाइक। आपने एक कुछ एक सब्सटेंस खा दिया, सपोज एक कॉफी पी दिया एग्जाम्पल, तो कॉफी पीने के बाद आपको क्या फील होता है, फ्रेश फील होता है, तो आपको अच्छा लगता है। उसी कॉफी को अगर एज ए दवाई यूज किया जाए, एज ए मेडिसिन

0: एग्जिस में भी काम किया जा सकता है, तो उसी प्रिंसिपल पर ये बनाया गया है। तो ये इनका जो फर्स्ट होम्योपैथी का जो शुरुआत हुआ था जर्मनी में हुआ था, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है उनका नाम, वो एलोपैथिक चिकित्सक ही थे।
1: हाँ जी।
0: तो उन्होंने एलोपैथी का पूरा शिक्षा पूरी करके जब प्रैक्टिस में आए तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, 1789 की बात है। विथ प्रैक्टिस उस समय के कुछ मेडिकल आर्टिकल्स को वो ट्रांसलेट भी करते थे। तो उन्होंने एक डॉक्टर विलियम क्यूलेन थे, तो उनका एक मेडिकल जर्नल था, मतलब आर्टिकल था, उनको जर्मन में ट्रांसलेट करना था। तो वो ट्रांसलेट करते करते उनको ये एक चीज पता चला कि सिंकोना एक मेडिसिन होता है, वो सिंकोना मलेरिया का ट्रीटमेंट में उस समय यूज होता था। तो जब उन्होंने ये ट्रांसलेशन शुरू किया तो उनको पता चला कि सिंकोना बार्क इसलिए मलेरिया को क्योर करता है क्योंकि वो तीता होता है, बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस। तो उनको ये बात बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, कुछ चीज बिटर है इसलिए उसका मलेरिया क्योर हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वही सेम सिंकोना जो मेडिसिन था, तो उसने सिंकोना का जो बार्क है, जो सिंकोना ट्री है, उसका बार्क को उन्होंने पीस के खुद खा के देखा, पूरा उसको सिम्टम्स आने लगा, जैसे कि फीवर, शिवरिंग और जॉइंट पेन, जो कि मलेरिया का सिम्टम्स होता है। तो वो सेम सिम्टम पूरा उसको बॉडी में डेवलप हो गया। तो उसके बाद से उनको ये लगा कि आप एक बार ड्रग्स या कोई मेडिसिन का इफेक्टिवनेस को जानने के लिए आप उसको अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में खाएंगे या उसको सेवन करेंगे तो उसी ड्रग का आपका सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी का शुरुआत हुआ है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा रिसर्च करके फिर बहुत सारा मेडिसिन अपने ऊपर, तो उन्हें ड्रग ट्रायल किया। तो ट्रायल उनका जो हमेशा हेल्दी इंडिविजुअल्स में होता था, तो इसलिए इसी को लॉ ऑफ सिमिलर्स भी कहते हैं।
1: तो इसी तरह से होम्योपैथी चिकित्सा की खोज हुई थी
0: जी।
1: और भारत में कब से इसकी शुरुआत हुई थी?
0: भारत में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। हाँ, वहाँ से जर्मनी से आके फिर उस समय राजा महाराजाओं का समय था, तो वो अपने प्राइवेट चिकित्सक रखते थे। तो ऐसे करके अराउंड 19th सेंचुरी में इंडिया में तो आ चुका था। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिकॉग्नाइज करके जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कि ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज ए सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, वो है 1973 को।
1: क्योंकि कोई कहता है एलोपैथी चिकित्सा बहुत अच्छी है, तो कोई कहता है कि होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या फिर सवारिक बहुत अच्छी है। तो अब जितने ज्यादा लोग उतने बातें तो होंगे और जी हमें एडवाइस देने वाले तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन ये सबसे जरूरी है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही रहेगा और इसको जानने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि इन सभी में फर्क क्या है,
0: है
1: ना?
0: क्या है? जी जी।
1: तो डॉक्टर साहिबा, अगर हम आपसे सवाल करें तो होम्योपैथी चिकित्सा के अंतर्गत किन रोगी के लिए किस तरह के इलाज होते हैं?
0: देखिए, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो एक ही चीज में सीमित नहीं है। आप इसमें नहीं दे सकते, उसमें नहीं दे सकते, इस तरह से नहीं है। सब चीज में दे सकते हैं, बट उनका अपना एक लिमिटेशन है।
1: हाँ जी।
0: तो वो लिमिटेशन में आता है जो प्योरली सर्जिकल केसेस है। जब हमने पढ़ाई किया तो हमको ये बताया जाता है कि जो प्योरली सर्जिकल केस है, जैसे आप किसी का कोल्ड ब्लडर बड़ा स्टोन हो के ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें आप अगर दवाई देने लगेंगे तो वो नहीं क्योर होगा, तो उसमें आपको सर्जरी ही लगेगा। जैसे आपका एक्यूट एपेंडिसाइटिस है, एपेंडिसाइटिस का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, उसमें अगर आप दवाई देने जाएंगे तो वो नहीं क्योर होगा, वो प्योरली सर्जिकल केस है, उसको सर्जरी लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से लिमिटेशन है, हर सिस्टम का अपना एक लिमिटेशन होता है, उसी लिमिटेशन और उसी के अंतर्गत ही काम करना होता है। तो उसमें आपका लिमिटेशंस में, जिसका एलोपैथिक सिस्टम हो या आयुर्वेदिक सिस्टम हो, सब सिस्टम क्या करता है, इनिशियल जो पढ़ाई होता है सबका सेम होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी उसमें अंतर यही होता है, दवाई जो इसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं, फार्माकोलॉजी सबका अलग होता है, हर सिस्टम का फार्माकोलॉजी अलग होता है। एलोपैथी का फार्माकोलॉजी अलग है, हमारा फार्माकोलॉजी अलग है, फिर आयुर्वेदिक का अलग है, सोरिक का अलग होगा। इस तरह से आपका सिर्फ मेडिसिन में डिफरेंस होता है, अदरवाइज पढ़ाई में कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम पढ़ाई होता है, उतना ही कोर्स ड्यूरेशन रहता है, जैसे आपका 5.5 years रहता है कोर्स का, उस तरह से होता है।
1: जी। और अगर मैं इमरजेंसी और ट्रॉमा स्थितियों के बारे में बात करूं, तो अगर किसी को इमरजेंसी है, खून बह रहे हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, तो उस दौरान एक अस्पताल में कई तरह के डॉक्टर होते हैं, जैसे एलोपैथिक के होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं या सवारिग्पा के होते हैं, तो उस समय तुरंत इलाज के लिए किसके पास जाना सही रहेगा?
0: जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सिस्टम में कुछ कुछ लिमिटेशंस होता है, ये एक लिमिटेशन ये भी है, हमारा इमरजेंसी जो मैनेजमेंट होता है उसमें हमारे लिमिटेशंस है।
1: जी, जी।
0: तो उस लिमिटेशन के अंतर्गत अगर जैसे आपको एक्यूट केसेस हुआ है, उस

0: में यूजुअली एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप जाके चूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक्यूट मैनेजमेंट होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उनका एक एक्यूट का भी एक टाइम बाउंड या पर्टिकुलर उसमें होना चाहिए है।
1: और अगर हम हमारे जिला अस्पताल तवांग के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज्यादा किस तरह की समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं ज्यादातर?
0: देखिए, मैंने जब तेजू में काम किया था मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, उसमें बहुत सारे केसेस आते थे क्योंकि वो है थोड़ा प्लेन एरिया है, गर्मी है, तो केसेस भी अलग आते हैं और उस हिसाब से पेशेंट नंबर भी बहुत ज्यादा है। तवांग में मैंने जिसे यहाँ में आया उसके बाद देखा, मैंने यहाँ में ज्यादातर स्किन के प्रॉब्लम्स लेके बहुत ज्यादा लोग आते हैं, स्पेशली जो वार्ट्स लेके जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में चेयर कहते हैं, तो सब बहुत लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी ओनली वार्ट्स के लिए है, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी हर चीज के लिए है। तो मेरे पास जो अभी फिलहाल मैंने जो यहाँ में आके जब ज्वाइन किया तब से मैंने स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखा, और जो बहुत लोग पाइल्स के प्रॉब्लम लेके आते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बच्चे भी आते हैं, और ठंडा जगह है, पहाड़ी इलाका है, तो जी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये सब लेके बहुत आते
1: जी। और जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी चिकित्सा जो है आमतौर पे त्वचा की समस्या के लिए ही काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ के लोगों में शायद होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर जागरूकता की कमी है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं?
0: कारण बोलूं तो मैं अभी जैसे जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा और भी मीन्स इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है, उसमें भी थोड़ा सा हमको कमी जैसा लगता है। और जैसे अभी वहाँ से जो ड्रग डिस्पैच करते मेडिसिन, तो टाइमली डिस्पैच नहीं होता है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं कराते है, तो वो सब भी एक बड़ा कारण है। और एक हमारे यहाँ में हमने कभी भी अवेयरनेस कैंप्स नहीं करते हैं गांव में जाके, विलेज लेवल में जाके, मैंने या मेरे प्रीवियस जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अगर कुछ अवेयरनेस कैंप्स किया होता या करना चाहिए मेरे ख्याल से, तब जाके लोगों को जाके, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आके पूछते कि इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे जो होम्योपैथिक दवाई यूजुअली आप जानते हैं कि वो एक मीठा गोली जैसा, तो सब लोगों को लगता है कि इसमें दवाई नहीं है, तो हम उसमें दवाई देते, वो मीठा गोली उसको व्हीकल कहते हैं, तो दैट इज एक मीन्स है दवाई को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए, तो एक जेंटल मीन्स कहते हैं। कोई और एक्स्ट्रा जो मैन पावर है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जैसे अब यहाँ में मैन पावर की बहुत कमी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं सिंगल होम्योपैथी चिकित्सक हूँ, तो उसमें भी कमी हो जाता है, तो इस तरह से अवेयरनेस कैंप्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और यूजुअली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आयुष का अपना अलग ब्लॉक रहता है, आईपीडी रहता है, जहाँ में पेशेंट एडमिट करके रख सकते हैं, तो उसमें होम्योपैथिक सिस्टम या आयुर्वेदिक सिस्टम जो भी हो सिस्टम के अंतर्गत मेडिसिन दे के पेशेंट को एडमिट करके ठीक करते हैं, तो वो सब भी कमी है यहाँ पर।
1: जी जी। और जैसे कि आप जिला अस्पताल तवांग में केवल होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है, तो हमारे तवांग जिला के अंतर्गत और भी कई जगह पर सीएचसी है, पीएचसी है, तो ऐसी जगहों पर कोई और होम्योपैथी के चिकित्सा अधिकारी फिलहाल कार्यरत है?
0: पीएचसी सीएचसी में कम है, लेकिन जैसे अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है आरबीएस के, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स रिक्रूट हुए हैं, तो वो भी ग्राउंड में काम करते हैं, लेकिन वो एज ए होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं काम करते, तो वो ज्यादातर आपका स्कूल हेल्थ रिलेटेड वो सब उसमें एंगेज्ड है, तो वो एज ए होम्योपैथी का काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर का काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाके मेडिसिन दे, तो उसमें काफी लूपहोल्स है आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स है उसमें काफी लूपहोल्स दिखाई पड़ता है।
1: जैसे कि आप जब औषध निर्देशन देते हैं लोगों को, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दवाइयाँ लेने के समय कब कब रहती है? भोजन करने से पहले दवाइयाँ लेनी होती है या फिर भोजन के बाद दवाइयाँ लेनी होती है? और साथ साथ एक बात और आपसे पूछनी है कि किसी के एक होते हैं आदत एलोपैथी के भी दवाइयाँ ले रही होती है और साथ साथ होम्योपैथी के भी लेते हैं, तो उसमें कोई रिएक्शन होने की संभावना रहते हैं?
0: देखिए, ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो बहुत जनरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो उनका जो मेडिसिन बनाया इस तरह कि हमारे बॉडी को लीस्ट हार्म हो, तो उस हिसाब से जिस अगर मेडिसिन को क्रूड फॉर्म में बहुत कम देते हैं, क्रूड फॉर्म में नहीं देते, उसको पोटेंटाइज करके उसका पावर बहुत कम करके देते हैं, इसलिए इसमें हानि होना बहुत कम रहता है।

0: हानिकारक उतना नहीं रहता है या साइड इफेक्ट नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। तो इसलिए आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक कोई अगर खा रहा है तो उसमें हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं, एलोपैथिक देखिए अभी कोई कोई शुगर का पेशेंट हो या प्रेशर का बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खाना होता है तो इमिडिएटली हम उनको नहीं स्टॉप करा सकते। तो इन द मीन टाइम अगर वो कुछ और मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते तो हम उनको अलाउ करते हैं, बस ये कहते हैं कि आप टाइमिंग अलग मेंटेन कीजिए। तो यूजुअली होम्योपैथिक मेडिसिन एम्प्टी स्टमक में खाना होता है, खाना खाने के आगे, और इसमें जैसे आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं तो आपको बहुत एसिडिक चीज ये सब मना रहता है, जैसे आप नींबू खा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, वो सब मना करते हैं क्योंकि उसमें दवाई का एफिकेसी कम होता है कहते हैं
1: जी। और आपने बताया कि होम्योपैथी के जो दवाइयां हैं इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम रहते हैं, लगभग ना के बराबर रहते हैं। तो अब मुझे भी जानने की उत्सुकता हो गई है और हमारे श्रोताओं को भी शायद इस बारे में जानने की उत्सुकता होंगे कि होम्योपैथी की दवाइयां आखिर बनते कैसे हैं, किन चीजों का उपयोग होते हैं।
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उनका सोर्स बेसिकली तीन सोर्सेस से आता है। एक प्लांट किंगडम से आता है जो प्लांट से बनाते हैं, एक एनिमल किंगडम से जो एनिमल प्रोडक्ट से बनाते हैं, और एक मिनरल्स से बनाते हैं। जैसे अब मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी, एक नेट्रम यूरिटिकम एक मेडिसिन रहता है होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आपका जो हमारा टेबल सोल्ट है उससे बनता है। टेबल सोल्ट तो ये मिनरल में आता है। जैसे अभी हम एक एकोनाइट प्लांट है तो उससे मेडिसिन बनाते, एक एकोनाइटम नेपालस मेडिसिन है ये एकोनाइट से बनाता है। एकोनाइट जो हमारे जो लोकल लैंग्वेज में इसको चंदो कहते हैं, चंदो, तो उसका है वो पॉइजनस चीज लेकिन उसको पोटेंटाइज करके उसका पोटेंसी इतना कम करके उसको एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है। और एक मशरूम का होता है एगरिकस मस्कस जो मशरूम से बनाता है, और एक है रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन से भी मेडिसिन बनाता है। तो रोडोडेंड्रोन जो हम लोग उदुंग मेंटो बोलते हैं, उदुंग मेंटो, तो इस तरह से हर तरह का एनिमल प्रोडक्ट से भी बनाता है, मिनरल से भी बनाता है और प्लांट प्रोडक्ट से भी बनाता है।
1: जी जी। और हमें ये भी जानकारी मिली थी कि साल 2014 में सरकार ने नेशनल आयुष मिशन नामक एक योजना की शुभारंभ की थी, तो इसके पीछे की मकसद क्या है।
0: जी, जब नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे प्राइम मिनिस्टर पद संभाला उसके बाद से उन्होंने ये नया स्कीम लॉन्च किया था, ये नेशनल आयुष मिशन। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2014 में। इसको लॉन्च करने के पीछे ये मकसद यही था कि जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि इतना अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कहीं ना कहीं लैकिंग है, कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पा रहे, तो उसी को आगे लाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था कि जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको एट पार एलोपैथिक या कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का साथ लाना है। तो उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया था अराउंड 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री ऑपरेशनल हो रहा है। फिर इनका जो मोटिव है नेशनल आयुष मिशन में ये होता है, फर्स्ट आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना, जैसे अभी जहां में प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत लोगों को जो अवेयरनेस की कमी है उसको अवेयरनेस देना आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो मेडिसिन है उसको कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब एक गरीब से गरीब भी मेडिसिन ले पाए, जो अभी गरीब है जो बहुत दामी वाला मेडिसिन नहीं ले पा रहे तो वो इस सिस्टम को ले, इस तरह के मेडिसिन ले। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आयुष ड्रग्स, तो जो क्वालिटी है क्वालिटी कंट्रोल करना वो भी उनके नेशनल आयुष मिशन में आता है। और आयुष एजुकेशनल सिस्टम जो मेडिकल कॉलेजेस है आयुष का उनको आपका स्ट्रेंथनिंग और अपग्रेडेशन करना है, और एजुकेशनल जो सिस्टम से और हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड करना है, और हर पीएचसी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में आयुष डिस्पेंसरीज और आयुष हॉस्पिटल को कोलोकेट करना, उनको साथ में लेके चलना है। अच्छा। ये इनका मोटिव था।
1: जी डॉक्टर साहिबा, हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो समय है समाप्त होने जा रहे हैं, तो अंत में हम आपसे ये एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि फिलहाल आप जिला अस्पताल तवांग में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है, और अब तक आपने कितने रोगी को इलाज किए हैं।
0: देखिए मैंने कैलकुलेशन तो नहीं किया लेकिन अप्रोक्सीमेटली जैसे मंथ में एवरेज में अराउंड 100 to 150 पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उसमें बहुत लोग फॉलोअप के लिए आते हैं, जिसे हमारे यहाँ में फॉलोअप सिस्टम होता है क्योंकि जो क्रोनिक मेडिसिन डिजीज के लिए आते हैं तो उनको फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। जैसे मैंने एक महीना का दवाई दिया तो उस महीना का दवाई खत्म करके फिर वो आते हैं, आके फिर पेशेंट बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बेटर है नहीं है, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो फॉलोअप प्लस न्यू केसेस मिला के अराउंड 100 to 150 में आ जाता है।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहिबा, आज आपने आकर

0: छोड़ी दवा के स्टूडियो में अपनी कीमती समय निकाल कर आए और हमारे श्रोताओं को होम्योपैथी चिकित्सा क्या है और इसमें किस तरह के इलाज किए जाते हैं और होम्योपैथी के दवाइयाँ किन चीजों से बनते हैं, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
1: थैंक यू।
2: श्रोता, अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ से संबंधित स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम में खंडोबा जंगमो जिला अस्पताल तवांग के डॉक्टर पेमायटन से एक वार्ता सुना। विषय था होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली और उपचार। उनसे भेंट करता थे सुशी दोर्जी डेमा।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम सांझ और आवाज। कार्यक्रम सांझ और आवाज में आइए पहले सुनते हैं फिल्म 14 अक्टूबर से एक सांझ।

श्रोता एफ एम याराना के इस गीत के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम सांझोर आवाज अभी पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रदेश के समाचार 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया थोड़ी देर

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और ईएसी ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और आगे बढ़ाने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। इस बीच ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कई उपायों पर भी बातचीत की गई। सदस्यों ने भारत और दुनिया पर पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर के बारे में अपने आकलन पेश किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की जीडीपी विकास दर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्षों में बनी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और क्षमता को दर्शाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी पारनायक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और परिचालन तैयारियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने शिलोंग में असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। राज्यपाल ने बदलती सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जवानों को हर समय सतर्क रहने पर बल दिया तथा सीमा बारबंदी कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में असम राइफल की भूमिका की सराहना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी पारनायक ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और विशिष्ट पहचान को प्रदर्शित करने वाले स्मारक डाक टिकट की श्रृंखला जारी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इस प्रस्ताव पर शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ब्रजेश कुमार के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई। प्रस्तावित विषयों में जनजातीय समुदायों और उनकी परंपराएं, विरासत स्थल, वनस्पति एवं जीव जंतु, जीआई टेक, प्राप्त उत्पाद तथा पारंपरिक हस्तशिल्प शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी और अरुणाचल प्रदेश द्वारा चिंपू स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वृक्षारोपण केवल साल में एक बार होने वाली गतिविधि नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाला मिशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज लगाया गया पेड़ प्रत्येक स्वच्छ हवा, स्वच्छ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य में योगदान देगा। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने विज्ञान सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत बागवानी विकास की मौजूदा करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHPT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर बागवानी महानिदेशक तोबम बाम और CSIR IHPT के निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार यादव ने अरुणाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री गैब्रियल दिवांगसु और सचिव कोच रिनिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। श्री वांगसु ने कहा है कि इस साझेदारी से समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से ठोस परिणाम मिलने की उम्मीद है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 18 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कमले, क्रादादी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित की गई थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में

0: operators to immediately discontinue the use of newspapers for packing or serving food items, citing serious health risks. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने। इसमें आज आप सुनिए सोनम किरकिरे के रचे बोल पर फिल्म शबास मिठू से कैलाश खेर, रुचिका और अमित त्रिवेदी की आवाजों में एक देशभक्ति गीत।

मिडी में वे 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही 104 FM मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आइए श्रोता कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। फिल्म एक बार फिर से अनुराधा पोटवाल और भूपेंद्र सिंह के आवाजों में। इस गीत के रचयिता विनोद पांडे तथा संगीत दिया है पंडित रघुनाथ सेठ ने। गीत की फरमाइश की है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गौस्वामी, लक्ष्मी देवी गौस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ना छूटे संसार से। इस गीत को लिखा है मशरू सुल्तानपुरी ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत की फरमाइश की है चंडीगढ़ से सतीश अनीजा और बिमला अनीजा ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत। एस टी बर्मन के संगीत पर फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर और मानर उदास के आवाजों में इस गीत की फरमाइश की है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्टो, पियर डिकास्टो, रोजी डिकास्टो और विलस डिकास्टो ने।

श्रोताओं, अभी आप आने लगे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के अवसर फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस तरह की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादवारा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी अभी ही पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और लम्हों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज से रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स केंद्र, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 9 रात्रि 9 बजे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रज्ञानानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता। सविता श्री भास्कर ने भी महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया। केएल राहुल और कप्तान गिल के शतक से पहले टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान। श्रेयस अय्यर होंगे टीम के नए कप्तान। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला माया च्वालिन्स्का और मीरा एंड्रीवा के बीच जारी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली होंगे आमने सामने। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने जापान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच जारी।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माइंड गेम शतरंज से, जहां प्रज्ञानंदा और सविता श्री भास्कर ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वे इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार है कि किसी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर प्रज्ञानंदा को बधाई दी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: शह और मात के खेल में कल 10वें और आखिरी राउंड में प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम किया। सफेद मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञानंदा ने बीच के गेम में कीमर की कुछ गलतियों का फायदा उठाकर 45वीं चाल में जीत हासिल की और टूर्नामेंट को 5 जीत 2 हार और 2 ड्रॉ से 18 पॉइंट्स के साथ खत्म किया। उनके दोनों ड्रॉ मैचों का फैसला आर्मागेडन गेम में हुआ, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। दुनिया के पूर्व नंबर 4 खिलाड़ी वेस्ली सो ने आखिरी राउंड में अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट को 17 अंकों के साथ समाप्त किया। उनके खाते में 2 जीत और 8 ड्रॉ रहे, जिनमें से 6 आर्मागेडन मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की। 10वें राउंड में वेस्ली सो ने 1.5 अंक जुटाए, जबकि फिरोजा सिर्फ 1 ही अंक हासिल कर सके। अलीरेजा फिरोजा 15.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो इस टूर्नामेंट में 2 बार आर प्रज्ञानंदा से हार गए, 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 3 मैच जीते, 4 हारे और 3 ड्रॉ खेले। कीमर 11 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर रहे, जबकि भारत के मौजूदा क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश 1 जीत 5 हार और 4 ड्रॉ से 8 पॉइंट्स के साथ छठे और आखिरी स्थान पर रहे। फाइनल में सबका ध्यान प्रज्ञानंदा पर था, क्योंकि वो ओवरनाइट लीडर वेस्ली सो से आधा पॉइंट पीछे थे। वेस्ली सो के फिरोजा के साथ शुरुआती ड्रॉ पर सहमत होने के बाद वो आगे निकल गए। उन्होंने बीच के गेम में मिली बढ़त को कीमर पर एक शानदार जीत में बदल दिया। उन्होंने नॉर्वे चेस में शानदार खेल दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। छठे राउंड के बाद प्रज्ञानंदा अंक तालिका में छठे और आखिरी स्थान पर थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने लगातार 4 मुकाबले जीतकर शानदार वापसी की और इस दौरान उन्होंने मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया और अंतिम से पहले वाले राउंड में अपने हमवतन डी गुकेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की। इन जीतों के बूते वो खिताब की दौड़ में शामिल हुए। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार था कि किसी भी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया हो। मैच के बाद प्रज्ञानंदा ने फाइनल के अपने अनुभव को साझा किया।
2: Yeah, I'm very happy. I didn't expect it when I lost 2 games.

उधर 19 वर्षीय सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया के उलान बतूर में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2027 फिडे महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सविता ने अफरूजा खमदमोवा को फाइनल मुकाबले में हराया। और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। सुनते हैं मैच के पहले दिन कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।

0: महाराजा यादवेंद्र रिपीट महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने पहले दिन खेल की समाप्ति तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में 41 के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल 5 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन जोड़कर भारतीय टीम को 180 के स्कोर तक पहुंचाया। सुदर्शन ने 104 गेंद में 13 चौकों की मदद से 81 रन टीम के खाते में जोड़े। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली। कप्तान ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर स्कोर 247 तक पहुंचा दिया। केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली।
1: And that could be it. It will be it. Tucked into the gap. It's not going to go for 4, but they're going to jog through for the brace. Brings up century number 12 in Test cricket.
0: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और दिन के खेल की समाप्ति से पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। खेल खत्म होने तक गिल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 148 गेंद में 121 रन की अटूट साझेदारी हो चुकी है। गिल 143 गेंद में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 103 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं।
1: He's been a class act as a skipper. He's been extremely consistent. The 11th century for Captain Shubman Gill.
0: पंत ने भी 70 गेंद में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 50 रन बना लिए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस बीच बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं तिलक वर्मा उपकप्तान टीम के होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।
0: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही आईपीएल में जबरदस्त और विस्फोटक प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत की प्लेइंग 11 में जगह पक्की होने से अब वैभव के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर टीम की ओर से खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का शानदार मौका होगा। महिलाओं में शेफाली वर्मा के नाम ये रिकॉर्ड है। भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स में ये रिकॉर्ड अगर हम इस समय बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 206 दिन की उम्र में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। वैभव के साथ साथ हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की भी टीम में वापसी हुई है। प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीम में जगह दी गई है, हालांकि उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को अपनी कप्तानी में T20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्य कुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है। ये थोड़ी बात निराशाजनक जरूर है सूर्य कुमार यादव के लिए। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है। वहीं ईशान किशन और शिवम दुबे की बात करें तो उन्हें भी टीम में जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे।

0: उधर एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को रखा गया है। हालांकि एशियन गेम्स के लिए मोहम्मद सिराज टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। जी प्रशांत
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। अहमदाबाद में खेली जा रही वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में आज भारत के रोहन तायडे ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल कॉम्पिटिशन में यह कामयाबी हासिल की। मेडल जीतने के बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।
3: नमस्ते, मेरा नाम रोहन सुनील तायडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने जो आर्टिस्टिक सिंगल किया उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो मेरे घर पे बहुत ट्रेनिंग की थी और जो कैंप में मैंने एक महीना ट्रेनिंग की उससे भी बहुत मेरे को कुछ सीखने को मिला।
2: भारत ने इस वर्ल्ड क्लास योग कॉम्पिटिशन में 6 गोल्ड समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। कल भारत की सब जूनियर लड़कों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था, जबकि भारत की जूनियर लड़कियों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने मेडल टेबल में अपनी टॉप पोजीशन बनाई रखी है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी अहमदाबाद।
1: और अब बात फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब मीरा एंड्रीवा ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में मीरा ने माया चालिंस्का को 6-3, 6-2 से हराया। उधर पुरुष सिंगल्स में भी कल फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली आमने सामने होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के पास अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतने का सुनहरा अवसर है। ज्वेरेव और कोबोली के बीच फाइनल रोमांचक होने की उम्मीद है। ज्वेरेव एटीपी हेड टू हेड सीरीज में कोबोली से 3-1 से आगे हैं। वे पिछले साल रोलिंग एरो में तीसरे राउंड में खेले थे, जब ज्वेरेव ने 6-2, 7-6, 6-1 से जीत हासिल की थी। 29 साल के ज्वेरेव का बड़े टूर्नामेंटों में शानदार रिकॉर्ड है। वे 2020 US ओपन और पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप रहे और 2024 में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने में सिर्फ एक सेट दूर रह गए। वहीं ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि कोबोली को मैटियो अर्नाल्डी की बीमारी की वजह से मैच से हटने से फाइनल का टिकट मिला। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में चेक स्टार जैकब मेंसिक को 4 सेट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। 3 घंटे 1 मिनट चले मैच में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को पेरिस के कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। ज्वेरेव दूसरी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स के।
1: और अब बात फुटबॉल की। गोवा के मडगांव में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत ने इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6th खिताब अपने नाम किया है। और अब बात हॉकी की। जापान के काकामिगहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए, कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। वहीं अंडर 18 लड़कियों की भारतीय टीम ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में कोरिया को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ शूटआउट में मिली करीबी हार से वापसी करने के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले 2 मिनट में ही बढ़त बना ली। संदीपा कुमारी ने दूसरे मिनट में गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी अलोंग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बुकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक

0: कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency.

तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ आज का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आपकी सेवा में कल दोपहर 2 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रसारण सहायक श्री थूतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री एकेदार, श्री तानिंग ताकोर और सुखशी शिकडेका, ट्रांसमिट